रेडियो नेपाल ख नेपाल बास्य समाचार जे उपेश मर्जन पाखिन नातिस थौ नेपाल सम्बत चिन्छ सौ पिखुद बचलागा पारु। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण शोकगु संशोधन अध्यादेश 2083 जारी यनादिगुदु। राष्ट्रपति पौडेल नेपाया संविधान कथ मन्त्री परिषदया सिफारिसे सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी लाउन्ड्रिङ निवारण शोकगु संशोधन अध्यादेश जारी यनादिगु ख। राष्ट्रपति ज्याकुया प्रवक्ता रितेश कुमार साक्ये पिठनादिगु विज्ञप्ति नेतना तगुदो। सरकार थिति अध्यादेश स्वीकृति या नीति राष्ट्रपति ज्याकु खुगु अध्यादेश मध्ये मिग सहकारी वा सार्वजनिक खरिद अध्यादेश जारी या नादी ढङ्ग गुदो। सरकार निगुको चरण अन्तर्गत मिग निसे सुनिग या बागमती लिसे साग खुसी सिथे चोङ्गु जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण यागुदो। नापाङ्गु चरणे थापातली सिनामङ्गल गौरी गाउँ शान्तिनगर व मनोहरा लागा बस्ती स्थानान्तरण या ढुङ्कुली मिग निगुको चरण ज्या याकुगु सहरी विकास मन्त्री सुनिल लम्सार जानकारी व्यादिगु ख। मिगजक खुस वचे खुगु छेटरा थुना ब्युगु दु बल्खु लागा पेस वचे खुखा व टेकुया बङ्सी घाट निस छेटर डोजर छेला चिकुगु थागुदु। सरकार जेन्जी आन्दोलन या घापा जुब्निगु धल पिदहगुदु। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय लिपाङ्गु निनिम या ना दुथ्याका जेन्जी आन्दोलन या घापा दुथ्याके धुङ्का लिपाङ्गु धल पित हगु ख। स्वास्थ्य आपतकालीन सञ्चालन केन्द्र प्रमुख डाक्टर प्रकाश बुढाथोकी या कथ मन्त्रालय मापदण्ड कथ जेन्जी आन्दोलन या झोले घापा जुपी नि खुस व खुइ म थेङ्गु थाइदिगु ख। नेपाल मेडिकल काउन्सिल हाक्न चिनगुम चिकित्सक या दर्ता प्रमाणपत्र लाइसेन्स खारेज यागुदो। काउन्सिल नेपाली नागरिकता टोटी ढुङ्कुपी विदेश राजधानी कापी थुपी चिकित्सक या लाइसेन्स दर्ता खारेज यागु काउन्सिल या रजिस्ट्रार डाक्टर सतीश कुमार देव धैदिको ख। उमिस बेलायती क्यानेडियाली अमेरिकाली न्युजिल्यान्ड जर्मन अस्ट्रेलिया व भारतीय नागरिकता कागुली दर्ता खारेज जुगु ख। थो निहने काउन्सिल नेपाली नागरिकता टोटुपी विदेश राहदानी कापी चिन नेमसियागु लाइसेन्स खारेज या ढङ्गुगुदु। नारायणगढ बुटवल सडक विस्तार आयोजना कथ पूर्वी खण्ड या दाउने सडक छखे ढलान यागु ज्या कोचागुदु। आयोजना पूर्वी खण्ड या सूचना अधिकारी शिव खनाले कत दाउने छखे ढलान या गु ज्या कोचागु ख। छखे ढलान या ज्या कोचागुले आ याक्न पिचियाना सडक यातायात ह्याकेगु थाहागुदु। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमिल सिन्हा सुरक्षित विश्वसनीय समावेशी व डिजिटल इको सिस्टम देखेको सरकार या मु प्राथमिकता दुगु धैदिगुदो। मिग राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस 2083 लसतया छगु हसना पिथना दिसे वेकल सुशासन सेवा प्रवाह आर्थिक विकास उद्यमशीलता तथा नागरिक सशक्तिकरण या नीति सूचना प्रविधि आधारभूत आवश्यकता जुगु यतना दिल वेकल नेपाल सरकार डिजिटल नेपाल देखेगु तातुना बिहारे झना चुङ्गुली सारङ सेवा प्रणाली या त सरल पारदर्शी उत्तरदायी व नागरिक मैत्री देखेगु लोपिन झनी उना चुङ्गु यतना दिल। रोल्पा जीव झाक्यालना सिप निगु मसिका पिहा ओगुदो। जिल्ला प्रहरी ज्याकु या सूचना अधिकारी एवं प्रहरी निरीक्षक सुनिल थापा ने पाली या कथ रुकुम पूर्व सिस्ने गाउँपालिका पाँच टाकुरा या श्री निद या गोर्खे बुढाथोकी ने सोध या तिलकुमारी बुढाथोकी नि च्यादो या युवा बिसी छिद या दिव्यन बिसी नि पेद या सृजना बुढाथोकी चिन सोध या सुदीप बुढाथोकी व पिद या ओम कुमारी बुढाथोकी ख। अथे दाङ या घोराई उपमहानगर स्वर रतनपुर चुनीमा ने पेद दुम द्रौपदी जिसी तिला जिसी ने द दुम जेनिस जिसी चिनी द दुम जेनिसा जिसी ने द दुम संयोग जिसी नि न्याद दुम एलिना जिसी लमजुङ या यमबहादुर जिसी व घोराई तेह्र या धनमाया विष्ट ख। अथे दाङ शान्तिनगर गाउँपालिका ए दुम
छेदुमा रुकुम सिस्ने पाँच चुनीमा जीव चालक पी निद या वेद बहादुर बिक सिस्ने पाँच या खुइद दुमा मिना कामी ओ खुइद दुमा लक्ष्मी शाह रुकुम पूर्व या भूमि गाउँपालिका पाँच या टेक प्रसाद बस्नेत ओ सिस्ने पाँच या निहेद या रुकमिना बस्नेत सिगुख रुकुम पूर्व रोल्पा या थवाङ गाउँपालिका जलजला उनाचुङ्गु जीप हिग रोल्पा या थवाङ गाउँपालिका एक सल्याब धाइगो थासे भी र च्यास मिटर क्वे कुटु वङ्गुख रुकुम पूर्व सिस्ने गाउँपालिका पाँच टाकुरा या सुई निद या समीर कामी सामान्य खाई घापा जुगुदो जीप चालक नाप निसम्म दुग्ली छम जकम्मा त ता लागु ख सचिव सिन्हेको श्रमिक दिवस मिग नेपालेन थिति संस्था थिति ज्याजोइन हङ्गुदो दिवस यलसता श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामजी यादव अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस यलसता सोङ्गु महत्व जागो ज्या घोषणा यनादिगुदो मन्त्री यादव भिडियो हस्ना पिथुना दिसेन हापाङ्गु घोषणा कथ न्यादे दुनी राष्ट्रिय व्यवसाय जन सुरक्षा तथा स्वास्थ्य ज्या जो श्रमिक या सुरक्षा स्वास्थ्य सुरक्षित ज्या या लोकस या अधिकार पुलिस यागु धाइदिगुदो निगु घोषणा विदेश दुपे नेपाली श्रमिक नाप प्रत्यक्ष सल सूचना कालबिल व पङ्ग जेङ्केद नेपाली दूतावास वापतिक लाइभ फेसबुक ज्याजोन ह्याकेगु धाइदिल अथे सुङ्गु घोषणा योगदान या लिदस सामाजिक सुरक्षा कोषे दुपे श्रमिक पिन्त छे न्यात जग्गा या नीति खुगु प्रतिशत ब्याज दरे कर्जा बिगु नेतना दिल अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले व परराष्ट्र मन्त्री सुशील खनाल नाप नेपाल भ्रमण दिम दक्षिण व पश्चिम एसिया नीति विशेष दूत सर्जियो गोम हिग बिस्क नाप्ना दिगुदु अर्थमन्त्री ओ विशेष दूत गोरदोथी निगु दे या आर्थिक साझेदारी व विकास ग्वाली नपाए थिति विशेष सल जुगु अर्थ मन्त्रालय धागुख अथेहे परराष्ट्रमन्त्री खनाल व विशेष दूत गोरदोथी नेपा व अमेरिका स्वाप्यत क्वाटिकेगु विशेष सल जुगु ख निगु दे या लगानी व व्यापार प्रवर्धन यागु विशेष न सल जुगु परराष्ट्र मन्त्रालय धागुदु वैदेशिक लजगा छेगो धका आप्ल दा कया विश्व वनाचो पिन्त नेपाल प्रहरी जोङ्गु दु जापान कोरिया व अमेरिका छेगो धका उमिस पि न्याम पाके सोङ्गु कर छिनपेङ्गु लाख दा कागु ख तेह्र थ्रुम्या सुरज लिम्बु सोलुखुम्बुया कमल बहादुर मगर व सागर शेर्पा काभ्रे प्लाञ्चोक या विनोद थापा सूर्य प्रसाद कोइराला सरोज गौतम व प्रहलाद खद्रिया त प्रहरी जोङ्गु ख अभियुक्त लिम्बु व मगर जापाने छोएको धाका झिन छम पाखे छगु करोड निगु लाख दाकागु खधासा थापा कोरिया छोए धका निखुम पाखे छगु करोड निगु लाख शेर्पा फ्रान्स से छोएको धका न्याम पाखे नि च्यागु लाखो गौतम छम पाखे निन हेगु लाख दा कागु प्रहरी धागुदु अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प इरान नाप ल्वापु कोठेदे त वोगु लिपाङ्गु प्रस्तावप्रति असन्तोष पङ्का दिगुदु वेकनथो प्रस्ताव मगागु धायादिसे दुग्यङ्क चलयामा धाइदिगुदु इरान सलया नीति पाकिस्तान पाखे अमेरिका थो प्रस्ताव छोगु ख थोएदोथि अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय वैगु खोला निसे दक्षिण दुने जर्मनी पाखे करिब न्यादो अमेरिकी सेना लित यङ्केगु धाइदुदु जर्मन चान्सलर नाप ल्वापु या विशेष अमेरिका कु ख्योङ्गा दिगुले जर्मनी दुपे अमेरिकी सेना लित याङ्के त सल जुया छोङ्गु अमेरिकी सरकार थागु ख थौ देङ्क पहाडी व हिमाली लाग्या खसु वैगु धागु दु कोशी बागमती गण्डकी नाप हिमाली व पहाडी लाग्या चुथासे व मधेस प्रदेश नाप लुम्बिनी व सुदूरपश्चिम प्रदेश या तराई लाग्या नन्याला मलकुटु वैगु पुवा नाप वा वैगु धागुदु मिग सोनिगले नि सोङ्गुफुटी च्यागु डिग्री सेल्सियस थाङ्गु क्वाज थौ नि निगु निसे नि पेङ्गु डिग्री तक थाङ्गु निगु दुकुमा यागुदु सोनिगले सुथ न्याता इजुया चिन च्यागु मिनेरे लुगु सूर्य सनिलया खुता इजुया पि पेङ्गु मिनेरे बिगु दुकुमा यागुदु नेपाल बासे बुख कोचाला
सुभा

नंबर 15, स्वयंभू इलाके में तजावुज करके बनाए गए घर और झोपड़ियों को हटाने का काम जारी रहने की जानकारी काठमांडू के माविन CDO मुक्तिराम रिजाल ने दी है। हुकूमत ने गुज़श्ता रोज़ बलखू और कालीमाटी इलाके की नदी किनारे रही पुरखतर बस्ती को हटाया था। माविन CDO रिजाल ने बताया कि अब तक काठमांडू वादी में सरकारी, अवामी और निजी ज़मीन पर तजावुज करके गैर कानूनी तौर पर तामीर करदा तकरीबन 2000 घर और झोपड़ियों को हटाया जा चुका है। साथ ही बस्ती हटाने के दौरान मुतासर खानदानों को होल्डिंग सेंटर भेजा गया है। हुकूमत ने मुल्क भर की सरकारी और आवामी ज़मीन पर के तजावुज़ को हटाने की मुहिम तेज़ करने के साथ ही बांके के नरेनापुर गाँव पालिका ने भी तजावुज़ के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। गाँव पालिका के सदर इश्तियाक अहमद शाह के ज़रिए दस्तखत करदा नोटिस में तजावुज़ करके रिहाइश पजीर अफराद या ढांचे बनाने वाले अफराद को 7 दिनों के अंदर अपनी रजामंदी से ज़मीन खाली कर देने की हिदायत की गई है। मुकर्रर वक्त के अंदर ज़मीन खाली नहीं करने और गैर कानूनी ढांचे नहीं हटाने की सूरत में गाँव पालिका ने डोज़र का इस्तेमाल करके उन्हें हटाने का इंतबाह भी नोटिस के जरिए दिया है। नेपाल मेडिकल काउंसिल ने मजीद 19 डॉक्टरों का लाइसेंस खारिज कर दिया है। काउंसिल ने नेपाली शहरियत तर्क करके 19 डॉक्टरों का लाइसेंस खारिज करने की जानकारी काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉक्टर सतीश कुमार देव ने दी है। इससे कबल काउंसिल ने नेपाली शहरियत तर्क करके बैरूनी पासपोर्ट लेने वाले 17 डॉक्टरों का लाइसेंस खारिज किया था। रजिस्ट्रार देव ने बताया कि नेपाली शहरियत तर्क करके बैरूनी पासपोर्ट लेने वाले इन डॉक्टरों का लाइसेंस खारिज कर दिया गया है। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ने आइंदा मंगसिर में इत्तेहादी कौमी जनरल कन्वेंशन मुनाकिद करने का ऐलान किया है। पार्टी के कोऑर्डिनेटर पुष्पकमल लाल प्रचंड की सदारत में मुनाकदा मरकजी इंतजामिया कमेटी के अजलास ने आइंदा मंगसिर 11 से 15 गते तक काठमांडू में जनरल कन्वेंशन मुनाकिद करने का फैसला किया है। रघुगंगा गांव पालिका वार्ड नंबर 1 के बेग में आज तुदा में डोजर दब जाने से डोजर ऑपरेटर की मौत हो गई है। जिले पुलिस दफ्तर के मुताबिक बेग के भिजरा से भजने जाने वाली सड़क की तामीर के दौरान तुदा गिरकर रुई से देवराली कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड का डोजर दब जाने से रघुगंगा गांव पालिका वार्ड नंबर 2 भगवती के 51 साल पदम कार्की की मौत हो गई है। नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता मशरक के कावासुती नगर पालिका वार्ड नंबर 8 काली गंडकी चौक वाक़ मशरक मगरब शाहरा पर पेश आए हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है तो एक शख्स ज़ख्मी हुआ है। आज सुबह फलफूल चौक से डाणा की जानिब जाती हुई स्कूटर सड़क किनारे रोक कर रखी हुई ट्रक के पिछले हिस्से से टकरा जाने से हुपसेकोट गाँव पालिका वार्ड नंबर 2 की निशा कुमाल की मौत हो गई है। ज़िले पुलिस दफ्तर के SP युवराज खड़का ने बताया कि हादसे में पड़कर शदीद जख्मी हुई स्कूटर के पीछे सवार निशा कुमाल को इलाज के लिए चितवन ले जाया गया था, जहां इलाज के दौरान आज सुबह उनकी मौत हो गई। जबकि हादसे में जख्मी हुए स्कूटर सवार कावासुती नगर पालिका वार्ड नंबर 8 के 37 साल शंकर श्रेष्ठ का भरतपुर अस्पताल में इलाज चल रहा है। बांके के राप्ती सोनारी गाँव पालिका वार्ड नंबर 2 वाके अगैया के नजदीक रोक कर रखी हुई ट्रक से मुसाफिर बरदार बस टकरा जाने से बस में सवार 38 मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। इलाके पुलिस दफ्तर कोहलपुर की जानिब से फराहम करदा मालूमात के मुताबिक आज सुबह राप्ती सोनारी गांव पालिका वार्ड नंबर 2 वाक़े अगैया घंटावा नदी के नज़दीक मशरक से मगरिब की जानिब जाती हुई बस रोक कर रखी हुई ट्रक से टकरा जाने से 38 मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। महकमा आब व मौसमियाती साइंस की मौसम पेशन गोई अजीम शाह के मुताबिक आज रात सुबह कोशी, मदेश, बागमती और गंडकी समेत मुल्क के हिमालयी और पहाड़ी हिस्सों में मौसम अमूमन अब्र आलूद रहेगा, जबकि तराई के इलाके में जुजवी तौर पर मौसम अब्र आलूद रहेगा। अजीम शाह के मुताबिक सुबह कोशी, मदेश, बागमती और गंडकी के चंद मकाम में और सुबह लुम्बिनी और करनाली के पहाड़ी और हिमालयी इलाकों की थोड़ी जगहों में और बकिया हिस्से के एक दो मकाम में बादल गरजने और आसमानी बिजली, तूफान और ओलों समेत दरमियानी बारिश और बर्फबारी के इम्कानात हैं। रेडियो नेपाल से उर्दू में खबरें ख़त्म हुईं।

ई सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दिवास थिक विजय झा से सुनल जाए मैथिली भाषा में समाचार। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल नेपाल के संविधान के धारा 114 के उपधारा एक बमोजिम मंत्री परिषद के सिफारिश में 3 अध्यादेश जारी कलने। राष्ट्रपति कार्यालय के हिसाबे ओ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संबंधी किछ नेपाल ऐन के संशोधन करे वाला अध्यादेश 2083, सार्वजनिक पदाधिकारी के पदमुक्ति संबंधी विशेष व्यवस्था अध्यादेश 2083 आ विश्वविद्यालय संबंधी किछ नेपाल ऐन के संशोधन करे वाला अध्यादेश 2083 आई जारी कलने। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री डॉक्टर विक्रम तिमिल सिन्हा सुरक्षित विश्वसनीय समावेशी तथा टिकाऊ डिजिटल इकोसिस्टम निर्माण सरकार के प्रमुख प्राथमिकता भेल बतौलने। आ राष्ट्रीय सूचना तथा संचार प्रविधि दिवस 2083 के अवसर पर शुभकामना संदेश जारी करत ओ सुशासन सेवा प्रवाह आर्थिक विकास उद्यमशीलता तथा नागरिक सशक्तिकरण के लिए सूचना प्रविधि आब विकल्प नहीं भ आधारभूत आवश्यकता भेल बतौलन। वो सूचना तथा संचार प्रविधि क्षेत्र में क्रियाशील उद्यमी नव प्रवर्तक प्राविधिक जनशक्ति स्टार्टअप समुदाय निजी क्षेत्र अनुसंधानकर्ता विद्यार्थी तथा संपूर्ण सरोकार वाला में हार्दिक शुभकामना व्यक्त कलन। वो नेपाल सरकार डिजिटल नेपाल निर्माण के लक्ष्य के व्यवहार में उतारित सार्वजनिक सेवा प्रणाली के थप सहज पारदर्शी उत्तरदायी नागरिक मैत्री बनेबाक दिस आगू बढ़ रहा बतौलने। नेपाल के डिजिटल नवप्रवर्तन सूचना प्रविधि सेवा डेटा अर्थतंत्र तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्रीय केंद्र के रूप में विकास करवाक उद्देश्य के संग राष्ट्रीय एआई नीति राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति तथा सूचना प्रविधि संबंधी कानून तथा संस्थागत संरचना के सुधार के मंत्रालय तीव्रता देने हुनकर कहब छलन। सरकार देशे भर के सड़क सुरक्षा प्रणाली में नीतिगत एवं संरचनागत सुधार करबाक लेल प्रतिबद्धता रहल जनौलक। गत बृहस्पति दिन रोलपा के थवांग गांव पालिका वार्ड नंबर 1 सलियाप में भेल जीप दुर्घटना में 20 गोटा के मृत्यु भेल घटना प्रति दुख व्यक्त करत सरकार दुर्घटना के छानबीन समिति के प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन करबाक बतौलक। दुर्घटना के सूक्ष्म छानबीन क सत्य तथ्य सार्वजनिक करबाक लेल प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह नेतृत्व के गृह मंत्रालय गठन कयने समिति प्रस्तुत करबा वाला प्रतिवेदन के निष्कर्ष सुझाव के तत्काल कार्यान्वयन करबाक प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय आ एक विज्ञप्ति निकाल कर जनौलक। लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय के प्रहरी उपरीक्षक के संयोजकत्व में गठित समिति के समयावधि आज समाप्त होब जा रहल। सड़क दुर्घटना नागरिक के जीवन आ परिवार के भविष्य संग जोड़ल गेला से संवेदनशील विषय भेला से प्राविधिक तथा मानवीय कमजोरी के सुधार करबाक लेल सरकार दृढ़ता के साथ आगू बढ़त से प्रतिबद्धता विज्ञप्ति में कैल गेल। सत्तारूढ़ दल राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछाने संग अमेरिकी दक्षिण तथा मध्य एशिया के लेल विशेष दूत सर्जियो गोर भेंट वार्ता कलने। सत्तारूढ़ दल के सभापति लामिछाने संग आई भेंट वार्ता भेल विशेष दूत गोर सामाजिक संजाल एक्स मार्फत जानकारी करौलने। भेंट में नेपाल आ संयुक्त राज्य अमेरिका बीच के साझेदारी के थप सुदृढ़ बनेबाक विषय में केन्द्रित रही का विचार विमर्श भेल ओ उल्लेख कयने। भेटक क्रम में राजदूत गौर नेपाल नया सरकार संग परिवर्तन के लिए बड़का जनादेश रहल चर्च करत सरकार द्वारा घोषित सुधार के योजना आशा लागल जेहन रहल विश्वास व्यक्त कलन। वो आवे वाला दिन में नेपाल संग नजदीक रही का सहकार्य करबाक लेल स्वयं उत्सुक रहल सेहो बतौलने। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी आवेवला अघन में एकता राष्ट्रीय महाधिवेशन आयोजना करबाक घोषणा कलक। पार्टी के संयोजक पुष्पकमल दहाल प्रचंड के अध्यक्षता में बैसल केंद्रीय कार्य संयोजन समिति के बैठक से आवेवला अघन 11 गते से 15 गते धरि काठमांडू में महाधिवेशन करबाक निर्णय कलक। आवेवला साउन मसांत धरि पार्टी सदस्यता नवीकरण तथा सदस्यता विस्तार अभियान संचालन करबाक, भादो 15 गते वार्ड, भादो 16 से मसांत धरि पालिका, आसीन मसांत धरि जिला आ कार्तिक 15 गते धरि प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न करबाक निर्णय कयने पार्टी के प्रवक्ता प्रकाश ज्वाला एके जानकारी दिलन। आवेवला जेठ मसांत भीतर केंद्र प्रदेश जिला स्थानीय पालिका वडा तथा टोल तह धरि के संगठनात्मक पार्टी तथा जनवर्गीय मोर्चा संगठन के एकीकरण तथा समायोजन क चुकबाक प्रवक्ता ज्वाला द्वारा आई जारी विज्ञप्ति में जनाल गेल। पार्टी के वार्ड से केंद्र धरि के सब कमिटी समानुपातिक समावेशी मान्यता हिसाबे निर्वाचित होवे वाला आ निर्वाचित कमिटी में अनुभवी प्रौढ़ आ युवा तथा नवयुवा के समावेशिता रहत। युवा नवयुवा के प्रतिनिधित्व 50% धरि पहुंचाल जात पार्टी जनौलक।
सरलाही में गुर्दा के डायलिसिस सेवा शुरू भेल अछि। ईश्वरपुर नगर पालिका वार्ड नंबर 6 बैलबांस स्थित नगर अस्पताल में जिला में पहिल बेर डायलिसिस सेवा शुरू भेल अछि। डायलिसिस सेवा के शुक्र दिन मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री जंगीलाल राय उद्घाटन कलन। एहि क्षेत्र के गुर्दा रोगी के लिए आब डायलिसिस कराब बर्दीवास जनकपुर धाम बीरगंज भरतपुर तथा काठमांडू लगात स्थान में जाय वाला बाध्यता के अंत भेल अछि। पूर्व संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री प्रदीप पौडेल के कार्यकाल में मंत्रालय से प्राप्त दूटा डायलिसिस मशीन मार्फत सेवा शुरू कयल गेल। ईश्वरपुर नगर पालिकाक नगर प्रमुख मनोज कुमार आचार्य जानकारी देलनि। नगर पालिका मध्य प्रदेश सरकार संग थप 3 डायलिसिस मशीन आनि कऽ पूर्व क्षमता मे सेवा संचालन करबाक पहल आगू बढ़ौलक अछि। सेवा उद्घाटन के क्रम में स्वास्थ्य मंत्री राय आवश्यक 3 डायलिसिस मशीन तथा प्राविधिक प्रदेश सरकार से उपलब्ध करेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कलन। मध्य प्रदेश सरकार छोट योजना से अधिक नागरिक लाभान्वित होबय वाला बड़का योजना में बजट केंद्रित करबाक निर्णय केने मंत्री राय बतौलनि। ओ कर्मचारी तंत्र के ढीला सुस्ती आ फाइल अटकाव वाला प्रवृत्ति के कारण काज करब कठिन भ रहल शिकायत सेहो कलनि। स्वास्थ्य शाखा के हिसाबे ईश्वरपुर नगर पालिका वासी के डायलिसिस सेवा निःशुल्क उपलब्ध कराल जाय, अन्य पालिका सेवाग्राही से प्रति एक बेर के प्रति बेर 2,500 से शुल्क लेल जात। डायलिसिस के क्रम में आवश्यक पड़े वाला खून के लिए प्रादेशिक अस्पताल मलंगवा स्थित ब्लड बैंक संग समन्वय कयल जात से नगर पालिका जनौलक अछि। प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री राय नगर अस्पताल में ब्लड बैंक स्थापना करबाक लेल यह वर्ष बजट व्यवस्थापन करबाक प्रतिबद्धता सेहो जनौलनि। निरंतर भ रहल वर्षा से कृषि तथा वन क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव पड़ल बावजूदो ग्रामीण भय के सड़क थाल में भेला से सर्वसाधारण के दैन की कष्टकर बनल अछि। विशेष कर महतरी के बर्दीवास गौसल्ला औढ़ी लगपास के उत्तरी क्षेत्र में वर्षा निरंतर भ रहला से कच्ची सड़क से बिगड़ल अछि। सड़क के खदिया खुदिया में पानी जमा भेला से चल फिर कटे में कठिन भेल अछि। कतेको स्थान में सड़क पूर्ण रूप में थाल में भेल अछि। काठमांडू उपत्यका के बागमती तथा सहायक नदी किनार में रहल अतिक्रमित बस्ती हटाव वाला कार्य आई सेहो जारी अछि। संघीय सरकार आ काठमांडू महानगर पालिका के संयोजन में आई काठमांडू महानगर पालिका वार्ड नंबर 16 बालाजू स्थित विष्णुमती नदी आ धोबी खोला नदी किनार में रहल घर टहरा सब हटाल जा रहल अछि। काठमांडू महानगर पालिका वार्ड नंबर 15 स्वयंभू क्षेत्र के अतिक्रमित घर झोपड़ी हटेबा कार्य जारी रहल। काठमांडू के सहायक प्रमुख जिलाधिकारी मुक्ति राम रिजाल जानकारी देलन। सरकार शुक्र दिन बलखू आ काली माटी क्षेत्र में नदी किनार में रहल जोखिमयुक्त बस्ती हटौने छल। अखन धरि काठमांडू उपत्यका में सरकारी सार्वजनिक आ निजी जमीन अतिक्रमित क अवैध रूप में निर्माण कयल गेल लगभग 2,000 घर आ झोपड़ी हटा चुकल, सहायक प्रमुख जिलाधिकारी रिजाल जानकारी देलन। बस्ती हटेबा क्रम में प्रभावित परिवार के होल्डिंग सेंटर में पठायल गेल। शहरी विकास मंत्रालय के अधिकारी सब त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशाला में भूमिहीन परिवार के लगत संकलन कर रहल अछि। बारा के जितपुर सिमरा उपमहानगर पालिका वार्ड नंबर 2 स्थित मुख्य बाजार क्षेत्र में सार्वजनिक जमीन में निर्माण कयल गेल 7 शटर व्यवसायी सब खाली कयलक अछि। उपमहानगर पालिका के बेर बेर के सूचना अदालत के आदेश पश्चात व्यवसायी सब शटर छोड़ बाध्य भेल अछि। मुख्य बाजार से नगर अस्पताल दिस जाय वाला बाट के उत्तर भाग तथा राम जानकी मंदिर के दक्षिण दिस रहल एहि शटर में लंबा समय से मेडिकल रेडीमेड कपड़ा तथा सैलून व्यवसाय संचालन होइत आयल छल। शटर खाली करेबा क्रम में प्रशासकीय अधिकृत रमेश सुवेदी के नेतृत्व में नगर प्रहरी नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी के टोली स्थल में पहुंचल छल। व्यवसायी सब अपने सामान हटाब लगलाक बाद सुरक्षाकर्मी आवश्यक समय दैत सहजीकरण कयने छल। महतरी के ओढ़ी नगर पालिका संघीय सरकार द्वारा लागू कयल गेल 2 सार्वजनिक छुट्टी संबंधी निर्णय के स्थानीय आवश्यकता शैक्षिक हित के मद्देनजर करैत परिमार्जन कक नगर क्षेत्र भीतर के विद्यालय सब में हफ्ता में 6 संचालन करवाक निर्णय कयलक अछि। शुक्र दिन बैसल नगर कार्यपालिका के बैठक से शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया में निरंतरता आवश्यक रहल निष्कर्ष निकालत रवि दिन सेहो पठन पाठन संचालन करवाक व्यवस्था मिलेबाक निर्णय कयलक अछि। नगर पालिका भीतर संचालन में रहल सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय सब आब 3 बाहेक हफ्ता के अन्य दिन में नियमित रूप में संचालन होयत। संघीय सरकार शनि आ रवि दिन सार्वजनिक छुट्टी देने तथा सरकारी कार्यालय 5 मात्र संचालन करबाक निर्णय कयने बावजूदो स्थानीय तौर अपन अधिकार क्षेत्र भीतर रहकर शैक्षिक तथा सेवा प्रवाह के प्रभावकारी बनाब आवश्यक व्यवस्था मिलायल गेल। नगर प्रमुख प्रदीप कुमार खड़का बतौलनि अछि।
महतरी के सीमावर्ती क्षेत्र में भारत दिस तस्करी होइत आल अधिक परिणाम के चाइनीज सेउ सशस्त्र प्रहरी बल नियंत्रण में लेलक। शनि दिन रात लगभग 2 बजे विशेष सूचना के आधार पर खटल गेल टोली शंकास्पद रूप में जा रहा 3 टा पिकअप गाड़ी रोक कर चेक जांच कला पर चाब नियंत्रण में लेल गेल। सशस्त्र प्रहरी के हिसाबे प्रारंभिक अनुसंधान में इस चाव सब भंसार से चोरी करत अवैध रूप में भारत दिस ल जा लागल खुलल। बरामद कैल गेल सेव के परिणाम अधिक रहल आई के बाजार मूल लाखों रुपया बरबरी रहल अनुमान कैल गेल। आ मौसम समाचार, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखा के हिसाबे आई मध्य प्रदेश लगायत लुम्बिनी आ सुदूर पश्चिम प्रदेश के तराई भूभाग के किछ स्थान में मेघगर्जन आ ठनका सहित अन्हर बिहार पाथर सहित मध्यम वर्षा के तथा हिमपात के संभावना है। महाशाखा के हिसाबे आई रात मध्य कोसी बागमती आ गंडकी प्रदेश लगायत देश के हिमालय पहाड़ी भूभाग में साधारणतः बादल लागत आ तराई भूभाग में आंशिक बादल लागत। कोसी मधेश बागमती आ गंडकी प्रदेश के किछ स्थान में तथा लुम्बिनी आ कर्णाली प्रदेश के पहाड़ी आ हिमालय भूभाग के किछ स्थान में आ बाकी भूभाग के एक दू स्थान में मेघगर्जन तथा ठनका सहित अन्हर बिहार पाथर सहित मध्यम वर्षा के संभावना आ हिमपात के संभावना रहल। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दीवास सुनि रहल मैथिली भाषा में समाचार पूरा भेल।

पत्रिकामा यस विशेष रिपोर्टसँगै आजलाई कृषि पत्रिका यति नै। कार्यक्रमबाट सहकर्मी काशीनाथ दवाली सहित शान्ति कुँवर र म नरेश नेउपानी आज्ञा चाहन्छौ। नमस्कार।

0: ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल द्वारा सार्वजनिक पदाधिकारी की पदमुक्ति सहित 3 अध्यादेश जारी। काठमांडू उपत्यका के बागमती और सहायक नदी किनारों पर स्थित अतिक्रमित बस्तियों को हटाने का कार्य आज भी जारी। कमला नदी में बनाए गए अस्थायी डायवर्जन बाढ़ में बहने से यातायात संचालन ठप। और जर्मनी से अपने 5,000 सैनिकों को वापस बुलाने का अमेरिका का निर्णय। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने आज 1-7-3 अध्यादेश जारी किए हैं। मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर आज राष्ट्रपति पौडेल ने स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संबंधी कुछ आइन में संशोधन अध्यादेश 2083, सार्वजनिक पदाधिकारी की पदमुक्ति संबंधी विशेष व्यवस्था अध्यादेश 2083 तथा विश्वविद्यालय संबंधी कुछ नेपाल आइन में संशोधन करने संबंधी अध्यादेश 2083 जारी किए हैं। ये जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता रितेश कुमार साक्य द्वारा जारी विज्ञप्ति में उल्लिखित है। काठमांडू उपत्यका के बागमती और सहायक नदी किनारों पर स्थित अतिक्रमित बस्तियों को हटाने का कार्य आज भी जारी है। संघीय सरकार और काठमांडू महानगरपालिका के समन्वय में आज काठमांडू महानगरपालिका 16 बालाजू स्थित विष्णुमती नदी और धोबी खोला नदी किनारे बने बस्तियों को हटाने की प्रक्रिया जारी है। काठमांडू के स्वयंभू, बालाजू, गोंगुबू बस पार्क, देवी नगर सहित विभिन्न क्षेत्रों में अतिक्रमित घर टहरों को हटाने का काम जारी है। ये जानकारी काठमांडू के सहायक प्रमुख जिला अधिकारी मुक्ति राम रिजाल ने दी। सरकार ने शुक्रवार को बलखू और कालीमाटी क्षेत्रों में नदी किनारे बसे जोखिम युक्त बस्तियों को हटाया था। अब तक काठमांडू उपत्यका में सरकारी, सार्वजनिक और निजी जमीन पर अतिक्रमण कर अवैध रूप से बनाए गए लगभग 2000 बस्तियों को हटाया जा चुका है। ये जानकारी सहायक प्रमुख जिला अधिकारी रिजाल ने दी। बस्ती हटाने के दौरान प्रभावित परिवारों को होल्डिंग सेंटर में भेजा गया है, जबकि शहरी विकास मंत्रालय त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशाला में भूमिहीन परिवारों का विवरण संकलन कर रहा है। हुलाकी राजमार्ग के अंतर्गत सिरहा और धनुषा को जोड़ने वाली कमला नदी में बनाए गए अस्थायी डायवर्जन के बाढ़ में बह जाने के बाद यातायात संचालन ठप हो गया है। निरंतर बारिश के साथ आई बाढ़ के कारण निर्माणाधीन पुल के विकल्प के रूप में अस्थायी रूप से बनाए गए इस डायवर्जन के आज सुबह बह जाने के बाद सैकड़ों वाहन और यात्री बीच रास्ते में फंस गए हैं। सहायक प्रमुख जिला अधिकारी चेत राज बराल के अनुसार नदी में पानी का बहाव अधिक होने के कारण पानी का स्तर घटने के बाद तुरंत ही बांध निर्माण का काम आगे बढ़ाया जाएगा। कुछ दिन पहले भी बारिश से नुकसान होने के बाद मरम्मत कर डायवर्जन को फिर से संचालन में लाया गया था। कमला नदी पर पुल निर्माण में अत्यधिक देरी के कारण स्थानीय लोगों को बरसात के मौसम में जान जोखिम में डालकर नाव का सहारा लेना पड़ता है या फिर कई घंटों का लंबा चक्कर लगाकर पूर्व पश्चिम राजमार्ग का उपयोग करना पड़ता है। नारायणगढ़ बुटवल सड़क विस्तार योजना के अंतर्गत पूर्वी खंड के दाउन्ने में सड़क के एक तरफ ढलान का कार्य पूरा हो गया है। आयोजना के पूर्वी खंड के सूचना अधिकारी शिव खनाल के अनुसार पूर्वी खंड में दाउन्ने लगभग 4 किलोमीटर क्षेत्र में पड़ता है, जहां एक तरफ की ढलान का काम पूरा कर लिया गया है। दाउन्ने में एक तरफ ढलान पूरा होने के साथ ही नारायणगढ़ बुटवल सड़क योजना के पूर्वी खंड का पूरा 65 किलोमीटर हिस्सा अब पीचिंग और ढलान से गया है। ये जानकारी सूचना अधिकारी खनाल ने दी। उन्होंने बताया कि एक तरफ ढलान पूरी हो चुकी है और जल्द ही इस ढलान वाली सड़क से यात्रा शुरू की जा सकेगी। नारायणगढ़ बुटवल सड़क के कुल 113 किलोमीटर को 2 खंडों में विभाजित कर काम आगे बढ़ाया जा रहा है, जबकि पश्चिम खंड में अभी पूरी तरह ढलान का कार्य पूरा नहीं हुआ है। एशियाई विकास बैंक के ऋण सहयोग से चल रही सड़क विस्तार परियोजना की कुल लागत दोनों खंड मिलाकर लगभग 17 अरब रुपए हैं। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
1: नेपाल टेलीकॉम को 4G

0: नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
1: अब बाकी समाचार। दक्षिण और मध्य एशिया के लिए अमेरिकी विशेष दूत सर्जियो गोर्ड नेपाल की यात्रा पूरी कर वापस लौट गए हैं। यात्रा के दौरान उन्होंने नेपाल और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के विषय में विभिन्न उच्च स्तरीय बैठकों में भाग लिया। ये जानकारी काठमांडू स्थित अमेरिकी दूतावास ने दी। इन बैठकों में नेपाल के प्रविधिक क्षेत्र में अमेरिकी व्यावसायिक अवसरों के विस्तार और व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने पर केंद्रित चर्चा हुई। उन्होंने नेपाली व्यवसायियों के साथ भी व्यावसायिक सहयोग के विषय में सार्थक विचार विमर्श किया। इससे पहले सत्तारूढ़ दल राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछाने और विशेष दूत सर्जियो गोर के बीच भी आज ही बैठक हुई थी। बैठक में दोनों के बीच नेपाल और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच साझेदारी को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। ये जानकारी विशेष दूत गोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से दी। उन्होंने कहा कि नेपाल की नई सरकार को परिवर्तन के लिए बड़ा जनादेश मिला है और सरकार द्वारा घोषित सुधार योजनाएं आशाजनक है। उन्होंने आगे कहा कि वो आने वाले समय में नेपाल के साथ निकट सहयोग करने के लिए उत्सुक है। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ने आगामी मार्गशीर्ष में एकता राष्ट्रीय महाधिवेशन आयोजित करने का निर्णय किया है। पार्टी की आज हुई केंद्रीय कार्य संयोजक समिति की बैठक में आगामी मार्गशीर्ष से 11 से 15 गते तक काठमांडू में महाधिवेशन आयोजित करने का निर्णय किया गया। पार्टी ने आगामी श्रावण महीने के अंत तक सदस्यता नवीकरण और सदस्यता विस्तार अभियान चलाने का भी निर्णय किया है। भाद्र 15 तक वार्ड स्तर, भाद्र 16 से महीने के अंत तक पालिका स्तर, आश्विन के अंत तक जिला स्तर और कार्तिक 15 तक प्रदेश अधिवेशन पूरा किया जाएगा। पार्टी के प्रवक्ता प्रकाश ज्वाला के अनुसार आगामी जेठ महीने के अंत तक केंद्रीय प्रदेश, जिला, स्थानीय पालिका, वार्ड तथा टोल स्तर तक के संगठनात्मक और पार्टी तथा जनवर्गीय मोर्चा संगठनों का एकीकरण और समायोजन पूरा कर लिया जाएगा। इसी तरह बैठक में संविधान संशोधन सुझाव कार्यदल भी गठन किया गया है। ये जानकारी प्रवक्ता ज्वाला ने दी। कृषि एवं पशु पंछी विकास, वन तथा वातावरण मंत्री गीता चौधरी ने कहा है कि मुक्त कवैया सहित विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मुक्त कवैया समाज जिला समिति कंचनपुर द्वारा आज आयोजित कार्यक्रम में मंत्री चौधरी ने कहा कि मुक्त कवैया, हलिया, हरवा, चरवा तथा कमलरी के अधिकारों की लड़ाई में सरकार उनके साथ आगे बढ़ेगी। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री डॉक्टर विक्रम तिमल सिन्हा ने कहा है कि सुरक्षित, विश्वसनीय, समावेशी और टिकाऊ डिजिटल इकोसिस्टम का निर्माण सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। आज राष्ट्रीय सूचना तथा संचार प्रविधि दिवस 2083 के अवसर पर शुभकामना संदेश जारी करते हुए उन्होंने कहा कि सुशासन, सेवा प्रवाह, आर्थिक विकास, उद्यमशीलता और नागरिक सशक्तिकरण के लिए सूचना प्रविधि अब विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता बन चुकी है। सरकार ने देश भर की सड़क सुरक्षा प्रणाली में नीतिगत और संरचनात्मक सुधार करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। गत गुरुवार रोलपा के थवांग गांव पालिका एक सल्यान में हुई जीप दुर्घटना में 20 लोगों की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए सरकार ने कहा है कि दुर्घटना जांच समिति की रिपोर्ट को तत्काल लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय ने आज जारी विज्ञप्ति में ये जानकारी दी। विज्ञप्ति में कहा गया है कि दुर्घटना की सूक्ष्म जांच कर सत्य तथ्य सार्वजनिक करने के लिए प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के नेतृत्व में गृह मंत्रालय द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट के निष्कर्ष और सुझावों को तुरंत लागू किया जाएगा। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शैक्षिक कैलेंडर में सुधार करने के लिए अनियमित रूप से रुकी हुई परीक्षाओं को तेजी से आयोजित कर रहा है। त्रिवी के परीक्षा नियंत्रण कार्यालय के अनुसार आगामी श्रावण से नियमित शैक्षिक कैलेंडर के अनुसार परीक्षाएं संचालित करने के उद्देश्य से वर्तमान में अनियमित परीक्षाओं को लगातार लिया जा रहा है। परीक्षा नियंत्रक लक्ष्मण पौड़ल ने बताया कि शैक्षिक कैलेंडर को व्यवस्थित करने के लिए हर महीने 3 से 4 प्रकार की परीक्षाएं आयोजित की जा रही है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी रक्षा विभाग ने जर्मनी से 5,000 सैनिकों को हटाने का फैसला किया है। ये निर्णय ऐसे समय में हुआ है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मत्जर के बीच ईरान युद्ध को लेकर विवाद सामने आया। दरअसल जर्मन चांसलर मत्जर ने कहा था कि ईरानी वार्ताकारों ने अमेरिका की बेइज्जती की है। जर्मनी में अमेरिका की सेना की बड़ी मौजूदगी है। पिछले दिसंबर तक वहां 36,000 से ज्यादा सक्रिय सैनिक तैनात थे। पेंटागन के प्रवक्ता सीन पार्नेल ने बताया कि सेना हटाने का आदेश रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ की ओर से आया है। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूरोप के कई देशों से नाराज है। ट्रंप ने इनसे हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के अभियान में मदद मांगी थी, लेकिन इस अभियान के लिए उन्हें समर्थन नहीं मिला। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 23.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल द्वारा सार्वजनिक पदाधिकारी की पदमुक्ति सहित 3 अध्यादेश जारी। काठमांडू उपत्यका के बागमती और सहायक नदी किनारों पर स्थित अतिक्रमित बस्तियों को हटाने का कार्य आज भी जारी। कमला नदी में बनाए गए अस्थायी डायवर्जन बाढ़ में बहने से यातायात संचालन ठप और जर्मनी से अपने 5,000 सैनिकों को वापस बुलाने का अमेरिका का निर्णय। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।
2: फोर जी LTE मोबाइल सेट सम्बन्धी नेपाल टेलिकमको सूचना। नेपाल टेलिकमले देशभर VoLTE सहितको अत्याधुनिक 4G LTE नेटवर्क विस्तार गरिरहेको हुनाले 4Gबाट गुणस्तरीय इन्टरनेट तथा कल सुविधा प्राप्त गर्नका लागि नयाँ मोबाइल सेट खरिद गर्दा सेटले LTE ब्यान्ड 20 800 MHz र VoLTE सपोर्ट गर्ने यकिन गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
3: अनन्त सम्भावनाको पुञ्ज, गतिशील मानव जीवन, कर्मशील सारा संसारका नेपाल र नेपाली मन,
4: दूर सुदूर क्षितिजका नेपाली अनुभव शब्द चित्रमा कोर्दै स्वदेशको सम्झना र परदेशको अनुभव सुन्ने सुनाउने एउटा चौतारी कार्यक्रम घर देश परदेश। कार्यक्रम घर देश परदेशमा स्वागत छ। म प्रस्तुता हेमन्त उप्रेती। विश्वव्यापीकरणसँगै यातायात र सूचना प्रविधिको विकासले अझ साँगुरो हुँदै गरेको आजको संसारमा रोजगार, स्वरोजगार, वृत्ति विकास, शैक्षिक प्राज्ञिक उन्नयन, तिनको प्रयोग उपयोग र सुविधामय जीवनको आकाङ्क्षामा मानिस संसारभर फैलिँदो छ। नेपालीहरू मात्र यसमा अपवाद छैनन्। कर्मक्षेत्रमा जहाँ जहाँ रहे पनि स्वदेश र जन्मभूमिप्रति सदा कृतज्ञ रहने नेपाली मनहरूका स्वदेश विदेशका जीवन अनुभवहरू खोतल्ने एउटा प्रयास हो कार्यक्रम घर देश परदेश। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपालको केन्द्रीय प्रसारणबाट हरेक शनिबार राति 10 बजेको समाचारपछि यो कार्यक्रम प्रसारित हुन्छ। साथै रेडियो नेपाल .com र रेडियो नेपाल मोबाइल एपमा पनि यो कार्यक्रम संसारभर सुन्न सकिन्छ। आजको कार्यक्रममा हुनुहुन्छ विगत 18 वर्षदेखि अमेरिकामा रहनुहुने साहित्यकार नीलम कार्की निहारिका। पाल्पामा जन्मी हुर्की राजधानी काठमाडौँमा नर्सिङ सेवा, नर्सिङ अध्यापन र सञ्चार कर्मीका रूपमा सुपरिचित निहारिकाले नेपाली साहित्यमा सिद्धहस्त उपन्यासकारका रूपमा ख्याति आर्जन गर्नुभएको छ। योगमाया उहाँको 2074 मदन पुरस्कार प्राप्त कृति हो भने चिरहरण 2072 पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त कृति हो। 20 वर्षको उमेरमै साहित्य कृति प्रकाशित गर्नुभएकी निहारिकाका द्रौपदी अवशेष, अर्की आइमाई लगायतका उपन्यासिक कृतिहरू साहित्यिक पाठकमाझ लोकप्रिय छन् भने 43 कथा, कागजमा दस्तखत, निहारिकाका कविता, राजमाता लगायत दर्जनौ कृति प्रकाशित छन्। विदेशमा बसोबास गर्नु स्वर्गीय खुसीको कुरा नभई व्यावहारिक प्रयोजनले आउने कुराहरू हुन् भन्नुहुने निहारिका आफूमा नर्सिङ क्षेत्रको सिप र योग्यता भए पनि विदेशमा आफ्नो समय साहित्य लेखन र त्यस सम्बन्धी अध्ययनमा लगाएको बताउनुहुन्छ। त्यो बेला पाल्पा झडेवामा गाउँकै एकमात्र आफ्नै शिक्षिका आमालाई चिठी लेखाउन आउने ओल्लो गाउँ पल्लो गाउँका परदेशी र लाहुरेका श्रीमती आमाहरूले अक्षरमा लेखाउन दुःख सुखका भावना व्यक्त गर्दै गर्दा आफ्नी आमा र उनीहरूको मनोभाव बाल सुलभ मनमस्तिष्कले अलिअलि पढेको र आमाले स्वस्थानी कथा पढ्न लगाउँदा वाचन कला र पौराणिक विषयवस्तुका कथाहरूबाट आफूमा आख्यानतर्फ बाल्य अवस्थादेखि नै बिस्तारै रुचि पैदा भएको लाग्छ भन्नुहुने निहारीका आमाले हामी छोराछोरीलाई कथा सुनाएका ती दिनहरू जीवनमा सदा प्रेरणास्पद र स्मरणीय रहेको बताउनुहुन्छ। ऐतिहासिक पौराणिक विषयवस्तुमा साहित्य लेख्नुहुने निहारीका 2081 योगमाया राष्ट्रिय पुरस्कारबाट समेत सम्मानित हुनुहुन्छ भने सर्वार्थ योगवाणीमा वैदिक दर्शनको प्रभाव विषयमा विद्यावारिधि हुनुहुन्छ। अमेरिकाको नर्थ क्यारोलाइनामा रहेर अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको सल्लाहकारको भूमिकामा समेत रहनुभएकी साहित्यकार नीलम कार्की निहारिकासँगको घरदेश परदेशका कुरा आजको कार्यक्रममा राख्दैछौ। स्वदेश आउनुभएको बेला उहाँसँग कुराकानी गरेका हौ। एकैछिन एउटा गीतबाट अघि बढौँ। परदेशमा हुँदा स्वदेश सम्झिरहने यो गीतबाट मेलो अघि सार्दै त्यसबीच कुराकानी जोड्छौँ।

समावेशी आवाज राष्ट्रीय रेडियो राष्ट्र को संचार। रेडियो नेपाल नया नेपाल को समावेशी आवाज राष्ट्रीय रेडियो राष्ट्र को